लोग मर्म कह जाने मोरा, लोग मर्म कह जाने मोरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जी, कबीर जी ने अपने इस शब्द अंदर धर्म की एक बहुत गहरी डूंगी गल कीती है, जिसनू ओपरी नजर नाल नहीं समझ सकते। कबीर साहब ने शब्द वरत्या मरम। मरम का अर्थ हुंदा है अंदर का भेद, राज। कहिंदे ने जिहड़ा राज मेरे अंदर है ना, जिहड़ी परमात्मा की गल मैं कहिंदा हां, वह लोगों नू समझ नहीं। लोग सिर्फ दिखावा, परपंच ते बाहर दियां भेख दियां गल्लां करदे ने, मेरे अंदर नू कोई नहीं जानदा। इस करके मैं जदों बाहर दे दिखावे नू तोड़दा हां, खंडन करदा हां, बाहर दे दिखावे दा विरोध करदा हां, तां लोग आंदे ने वी इह ते झल्ला होया फिरदा। जिवें गुरु नानक साहब ने जनेऊ पाउण तों कीता इनकार, ते असीं जानदे हां कि सारे भाईचारे ने आखिया इह ते कमला है, इनू ते धर्म की सोझी नहीं, समझ नहीं। लेकिन सतगुरु स्पष्ट सन कि मैं देखता हां बड़े लोगों ने जनेऊ पाया, पर किसे अंदर दया नहीं है, किसे अंदर संतोख नहीं है। इस करके जिन्ना चिर यह चीजा मेरे को आ नहीं जांदियां, इहदा कोई अर्थ नहीं रहना, ते मैं सिर्फ दिखावे वास्ते इस जनेऊ नू पाउण लई तैयार नहीं। एक वक्त आया कि गुरु नानक साहब की उसे ही जोत ने आखिया ए जनेऊ ए तिलक मिटन नहीं देने। हो सकता है किसे नू इस तिलक तो, किसे नू इस जनेऊ तो कोई अंदर दे मरम की गल पता लग जाए। साधन ते है, यतन ते है, इस करके इस यतन नू फेल नहीं होने देना। माफ करना, हुण जे कोई कड़ा पा के, किरपान पा के भरमा वहमा ते जुल्म की गल करदा, ते कड़ा ते गल नहीं कहिंदा, ना कृपान ये गल कहिंदी है, ना एक ककार ये गल कहिंदे ने, पर उस दे गलत कर्म नाल ना कड़ा गलत हुंदा है, ना कृपान गलत हुंदी है। ते जे कड़ा एक दी थां 20 पा ले जान, कृपाना एक दी थां 10 पा लिया जान, ते जिहड़ा कृपान दा भाव ते कड़े दा भाव जीवन विच होना चाहिदा है, उह नहीं होवे ते की बनेगा दिखावा। इस करके लोग बहुता दिखावा करदे ते दिखावा वेखदे ने। कीर्तन हो रहा है, पाठ हो रहा है, कथा हो रही है, ते कोई कीर्तन नहीं सुन रहा, अपने ही गुटका लेके पढ़ रहा है। कई लोग ने कीर्तन आशा दी वार दा हो रहा होवे, अपना नितनेम कर रहे होणगे विच बैठे। कई लोग ने कीर्तन हो रहा, बाणी विच ध्यान नहीं, अपनी माला चुकी फिरदे ने।

गायत्री को गुपत जप्यो, कौं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो, काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत, काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कत

पंजवा वचन सखा दी टहल सेवा माण होंदया भी अवस्था होंदया भी सिख दी टहल सेवा दो प्रकार की कहें थोड़ा चेता आ जाए सिख दी टहल सेवा मैं भी करा दो प्रकार की जे एक लोड़वंद सच्चे ग्रिस्ती सिख की आर्थिक मदद करनी कहते हैं आर्थिक मदद तन वालों माया वालों आर्थिक मदद लोड़वंद यह लफज नोट करने लोड़वंद सच्चे सिख ग्रिस्ती की आर्थिक पक्ष वालों मदद करनी सिखां दी टहल सेवा दो प्रकार की एक यह है एक है कि सिख का घर प्रशादा सद के उहदी कोई टहल सेवा करनी कि दोवें जरूर होण पिछे जे तुहाडे चों ही सज्जण सी सुल्तान विंड पिंड तों एक शरीर जिदा पंज पाड़ सुमनी साहब नेम सी छब्बी पाड़ जबजी साहब नेम सी ते सैकल सी टुटा जा गरीबी वालों दरबार साहब रोज जाना उन्हें साढ़े तीन चार बजे ते तुहाडे चों एक सज्जण ने मैनू याद है 5000 रुपया मेरी जेब च पाया सी कहिंदे उस सिख नूं एक स्कूटरी लै दिओ सैकेंड हैंड जिन्नी कि मेरी समर्था है मैं चाहना भी वह 3:30 बजे सैकल ते ना आवे स्कूटरी ते आ जाए कहिंदे ना यह आर्थिक मदद मैं फस भी गया सां उदों उन्हों मैं क्या भी इतना किसी की गल आई तेरे लिए आ लैनी वो अगों कहिंदा सी नहीं मैं लैनी नहीं देण वाला कहिंदा सी मैं करनी ते फिर ना विचकारला जिहा काम करके नबेड़ना पिया सी भई तू उहदी उधारी समझ के रख लै जदों तेरी बन गई तू उहनूं मोड़ दई जिन्हें मदद की जिन्हें मदद की सी वह कहिंदा जी मैं दे के लवा मैं उहदा मोढ़ा फड़ के मैं क्या इहो जिहा फिर होर लभ लांगे उहनूं दे देंगे लख सतनाम इतने होर गुरसिख दी गुप्त यह होवे गुप्त शो करके नहीं ये फिर आर्थिक मदद शो करके दित्ती तो अगले की हीण भावना आ जाए यह होवे बस सज्जा हथ दवे तो खब्बे नूं ना पता लगे अली गल आर्थिक मदद कोई रंगे होवे गुरसिख नाम जपण ना होवे आर्थिक पक्षों कमजोर होवे उहदी धी दा विआह होवे ना उहदे घर आम रिश्तेदारां नालों ही जाण के रखा होवे डबल होर ज्यादा सगन जाण के पा के आया करो होवे बंदगी वाला नाम जपण वाला तुहाडी उस वेले उहनूं लोड़ हुंदी है आर्थिक मदद दी इह सिख दी टहल सेवा इक इह है आर्थिक मदद करनी पर होवे नकली ना अजे नकली बड़े जाए आखो सतनाम आ कथा मैं नहीं चाहता कहर बन जाए कथा कहर ही बन जाए वो नकली का बड़ा ही हो मदद लैण वाले ये तुसी रखना वाकई नाम जपण वाला है बंदगी वाला है अमृत वेले जागण वाला आर्थिक पक्ष कमजोर है तां भी कुछ करा है टहल से वैसे नकली तुसी रखना है क्यों महाराज ने कहा

दान यकल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कथा कह रहा बने तां परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगी है पीछे नकली दी, दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना किराया चाहिए, सतना भला हो जाए। तेन दो महीने पहले तो दिता जी हजूर साहब का किराया, यो आया वा जी। कुछ होर बंद ने कहा साड़ी मुंदरी चढ़ाना सा चढ़ाना, वो पिछे मैंने जाना पै रहा, पता नहीं हम कई को की कोई लिया नकली। कार्ड आ जाए कि ब्याह है जी मदद करो, असि फिर बाबे दे खुल के कही गए तू कार्ड ले मदद ली गया तो हाँ जी ब्याह है बच्ची का ब्याह है, उसी आप कथा की थी तैर सेवा कर ली। फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस जिमें साडे कोल कार्ड लेके आए, किनिया संस्थावां कोल कार्ड लेके मदद मंगनी है, जे सच दसेंगा तो आ 1300 रुपया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई बार सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे व्याह नूं व्यापार बना ले, इथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै, तुसीं वेखणा है नकली भी है। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला आर्थिक पक्षों कमजोर है, ओदी बच्ची दा व्याह है, एक तो जरूर जा भावे 10 मिनट लई जा, तेरे जान नाल ओदा माण वधेगा, एक ओनू 4 गुणा सगन भावे लिफाफे च दे आ इसे बहाने नाल। एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा, जे गुरु नानक वेले का इतिहास फरोलो ना, दो भरा सुनते हो ना सूरज प्रकाश शिया गजन, दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवें शिया गजन विआह सी ना शिये की कुड़ी का, वह बरात जदों आई सी उन्होंने आंदिया कहता जी बरात 7 दिन 7 रातां रुकेगी, क्या कि नहीं उदो रवाज हुंदा सी बरातां 2-2 दिन रुकदिया सी 2-2 रातां, हुण तो रवाज बदलते जा रहे। उन्हें कहा 7 दिन तो उन्होंने फिक्र लग गया आम चार सिख, कहिंदे जिन्ना लाका सी फिर उन्हें हर कोई अपने घरों, क्यों दोवें नाम जपण वाले आखो सतनाम करना, 7 दिन 7 रातां पढ़ो साखी। कहिंदे पदार्थ वंडींदे रहे ने, बरात छगदी रही संगत छगदी रही, तोठ नहीं आई संगत दौड़ गई आखो सतनाम।

अचानक राजे नु जाग होई। राजे ने की तके राणी वाला पलंग खाली पे आई साहब आई गुरदास जी लिख दे राणी वाला पलंग खाली थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी। और जिस वेले राणी नु राजे ने नहीं तकिया तब भाई साहब जी लिख रहे राजे दे मन च बड़ी है अद्धी रात का समय राणी किधर चली। राजा उठिया महल दे अंदर राणी नु लभण लग गया सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना भी मन विच वरत गई है। तो प्यारी साध संगत राजे दे मन विच राणी दे मुतलक चंगे ख्याल भी आउण लगे मंदे भी आउण लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है पर अधी राती राणी दा महल विचों है हाजिर होना ए तां मैनू धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया नींद आ गई। दिन चढ़ेगा जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दिती राणीए उठ। राणी उठी राजन हुक्म करो।

है पठान, काम कदी कीता नहीं। तीन दिन हो गए खादा कुछ नहीं, मजदूरी करनी आंदी नहीं, मांग के खाना शान दे खिलाफ समझदा है। पर गुरु साहब जी कहंदे ने दुख तदे जां विसर जावे, भुख व्यापे बहु विधता। इंसान दुखी उदू हुंदा है जदों ओह रब नूं भुला दिंदा है, क्योंकि रब नूं भुला के ओह माड़े कर्म करदा है, विकारां विच पै जांदा है, फिर शरीर नूं रोग लग जांदे। ते जिहड़ा इंसान रब तों दूर नहीं हुंदा ओह कदी दुखी नहीं हुंदा। दुनिया विच निगाह मार के देख लो कि चमक दमक वाले किन्ने क सुखी ने, असी लोग किन्ने क सुखी आ अपने अपने मना विच खुद देख लई। ए राजकुमार, भुख बड़ी लगी, पैसा कोल कोई नहीं, मंग के खाना शान दे खिलाफ समझदा है, पर कहंदे ने भुख बहुत बुरी। एक पिंड विच ए जिवें दाखल होया किसे कुल मंगण दी हिम्मत नहीं पैंदी।

संगत रुकी, लंगर तैयार होया। एक पासे कीर्तन हो रहे है, एक पासे लंगर पक रहे है। उन्हां सिखां ने इस राजकुमार वास्ते खिचड़ी बनाई, जिदे विच देसी घ्यो पा के इनू खाण वास्ते दिती। कईआं दिनां दा भुखा सी, इह खिचड़ी खा रहे है। सारी संगत इहदे दुआले बैठी है, इह सारिआं दे मूंह वल देखदा है। सारिआं दे मूंह ते इसनू प्यार नजर आया, अखां विच अपनापन नजर आया। सारे इहदे कोल बैठे ने कि किसे तरह असी इहनू खुश करिए, इहदी खुशी प्राप्त करिए, इह दुखी ना दिखे। खिचड़ी खांदा इह राजकुमार रोण लग पिया। इहनू रोंदा देखिया तां सिखां ने पुछिया, ऐ युवराज की गल है, तेनू किसे ने कुछ के?

0: रोम रोम हर प्यारे गुरमुख प्यारा गुरमुख प्यारा रोम रोम हर प्यारे गुरमुख प्यारा गुरमुख प्यारा रोम रोम हर प्यारे गुरमुख प्यारा गुरमुख प्यारा रोम रोम हर प्यारे गुरमुख प्यारा गुरमुख प्यारा रोम रोम हर प्यारे गुरमुख प्यारा गुरमुख प्यारा।
1: कोई बिरला जो गुरमुख अवस्था नु पहुंच गया जितने इतनी कमाई कीती है, महाराजा हीरा सिंह नाभा कहंदा है कि मेरे मन दी ओ ख्वाहिश भी पूरी होगी जो मैं कहंदे मेरे इच्छा सी कहंदे मैं इन्हां दे विचों ही गुरु नानक दे दर्शन कीते हन इन्हां दा रोम रोम कहंदे जो है मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा प्रतीत कीता है। बोलो
2: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: रोम रोम बाबा सुंदर सिंह नूं कई गुरमुखा ने सिखा ने बेनती की थी कि कोई नाम दी अवस्था रोम रोम भी कोई अवस्था होंदी है। महापुरुषा ने अपनी ढो कंध दे नाल लगा ली ते सिखा नूं सिंघा नूं कहा भी तुसी कंध दे नाल कन ला के सुनो। जदो ओ कन दे नाल कंध अपना कंध दे नाल कन लाउंदे हन तां उहनां नूं की आवाज आउंदी है उस दे विचों भी वाह वाह। उन्होंने ढो लाई हुई है क्रोम रोम दे विचों ते कंध दे विचों भी उन्हां नूं फिर वाहिगुरु वाहिगुरु दी आवाजा आउंदियां हन। बाबा सुंदर सिंह जी आंदे जीवन दी ऐसी कथा आउंदी है। सो गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे सिर्फ यह नहीं बोल के ही अवस्था है, इहदा मतलब यह नहीं समझ लेना कि आपां ने बोलना ही नहीं है। बहुत सारे सोचदे हन बई वाहिगुरु वाहिगुरु बोल

सब धर्म राहे की जाए। कई मेरा मनुख पले कर्म करदिया होया भी मन विच अहंकार कर लेंदे, मैं कर रहा, जे दान दिता तां मैं दिता। कई मेरा मनुख दान कर रहा होंदे, किसे लोड़वंद दी लोड़ पूरी कर रहा होंदे, उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा सेवक बन के नहीं दाता बन के कर रहा होंदे। ते हजूर कहिंदन जे को होए बहे दातार, तिस देन हार जाने गावार। जे वाहिगुरु ने तैनू समर्था बख्शी है कुछ चंगे पासे लाउन दी, ता फिर अहंकार न करी। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन भाई, कई मेरा मनुख अज्ञानता मूर्खता दी बेड़ी तां पैरां विचों लोहे दी बेड़ी ला देंदा ते चंगे कर्म करदा। पुन दान करके चंगे कर्म करके जे मन विच अहंकार कर रहा है, तां हुण इसने सोने दी बेड़ी पा ली है पैर विच, रहा तां कैदी दा कैदी ना। इसलिए जे वाहिगुरु ने भाई तैनू समर्था बख्शी है सेवा करन दी, तां फिर मन विच अहंकार न कर। बीज कितना भी चंगा होवे ते जे धरती चंगी ना होवे तां बीज ही जाया चला जांदा। इसलिए हजूर कहिंदे न तेरी नीयत भी रास होवे चंगी होवे, तेरा मन भी गुरु दे चरणां विच निमरता दे नाल जुड़िया होवे, ते फिर तेरा जपया होया नाम फलीभूत होवेगा। ऐसा ना होवे दे दे मंगे सह सह गूणा, असी क्यों गुरु नालों बिछड़ जांदे हां, भटक जांदे हां अपने असल राह तो, क्योंकि असी देने तां थोड़े जे पैसे होंदे ने गुरु अगे रख के, ते फिर किडियां लंबियां अरदासां करदे हां कि हे वाहिगुरु मेरा आ कारज भी सवार, आ भी सवार, ओ भी मेरा कम कर। ते जदों कोई भी नहीं होंदा कम, तां फिर असी गुरु वल्लों बेमुख हो जांदे हां। हजूर बाणी विच भी दस रहे हन भाई, किसे नूं पैसे देईए बड़ी गल है, तू उस कोलों विहाज लै लै, ते जे तू 1% दे के 100 गुणा गुरु कोलो मंग रहा है ते नहीं मिलिया ते तू बेमुख हो जाना है। दे मंगे सह सह गुणा शोभ करे संसार, ते जे तू देंदा भी है उदे ना ते ता चौने के सारी संगत सारा संसार मेरी शोभा करे। भाई आ वेखो जी कितना दान कीता है। हजूर कहंदे हन धर्म राज दे जाना पेगा, पेश होना पेगा, ते जे जन्म मरण तो रहत होना चाहना है ता अपना तन मन धन गुरु दे अर्पण कर दे, गुरु दा समझ के वर्त। ते फिर कीता होया सिमरन, कीती होई सेवा, तेरा जन्म मरण घट देवेगी, क्योंकि ए मन मुखी रीतां हन। दे के मन विच अहंकार करना मन मुख चंचल मत है, अंतर बहुत चतराए। कीता करतिया बिरथा गया, एक तिल थाए ना पाई, हजूर बख्शिश कर रहे हैं।

एलिशे बाकी थी और बाणी सुनाई जिथे एदे तन दा कोड़ कटिया गया मन दा भी कोड़ कटिया गया। भाई बाने दे चरण पकड़ दे मेरे लिए तो तू रब बन के आए जिसने मेरा परलोक भी ते लोक भी सवार दिता है। मेरा क्या जीवन सी जे तू ना मिलता पता नहीं की हाल होंदा। हुण कृपा कर जिस गुरु ने तेरिया चोलियां भरिया हन उस गुरु दे मैनू भी दीदार करा दे। मेरिया अखां तरस दईआं हन मेरा भी जीवन सफल कर दे। भाई पाने ने जदों इस साकत पुरश दा प्यार वेख्या समझ गए कि इसकी सुती हुई सुरत जाग उठी है। इसने सच नूं पछाण लिया तां अलाहाबाद तो फिर श्री हरिमंदर साहब विखे अकाल तखत साहब विखे धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक विराजमान हन। संगतां जुड़ियां होईआं हन। भाई पाना अते ए पुरश आके जदों चरणा ते नमस्कार कीती नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो देते। ज्यों ज्यों चरणा नूं लिपटदा अंदर दा शीशा साफ हो रहा। हजूर ने बख्शिश दे घर विच आके आख्या जाओ भाई तुसी निहाल निहाल निहाल होयो तां इस नूं लंगर दी सेवा दे दित्ती और सारा जीवन ए पुरख लंगर दी सेवा करदियां गुरु की खुशियां मानदियां अपना लोक परलोक सवार गया। तो हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं भाई पुन दान जो बीज दे जेड़े हंकार करके बीजदे हैं ओ तां धर्म राज कोल जाणे ते जेड़े तन मन धन गुरु का समझ के बीज बो रहे हैं ओ फिर गुरु कदे उन्हां नूं धर्म राज दे वस नहीं पावेगा। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच

लीला चणलत वखाणदा अंतर जामी ठाकुर पावे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जयदेव बारे उपदेश करते हैं, जिस तरह के आप कल दे दीवान विच विचार कर रहे सां, जयदेव नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। जयदेव त्याग्यो अहंमेव नाई उदर्यो सैन सेव। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो संसार ते कि कैसे गुरु हन, जिन्होंने अपनी गोद दे विच हर धर्म हर वर्ण दे भगतां नूं अपनी गोद विच बिठाया, ना इत्थे कोई जात पात दा सवाल, ना ऊंच नीच दा, इत्थे इक्को ही उपदेश है, सबे सांझी वाल सदाएन कोई ना दिसे बहरा जी। इत्थे कोई बेगाना नहीं, यह वक्री गल है। अगर साड़ी सोच किसी नूं बेगाना समझती है, गुरु की नजर विच कोई बेगाना नहीं। भगत जयदेव केंदली पिंड विच पैदा हुए, जिस तरह के कल आपां विचार कीती, छोटी उम्र विच माता पिता मर गए, माता पिता दे चलाणी दा

अखर पढ़ प्रतीत कर, होय विस्माद ना अंग समावे, वेखे जाए उजाड़ विच, बिरख एक अचरज सुहावे, गीत गोबिंद संपूर्णो पत पत लिखिया, अंत ना पावे भगत हेत प्रगास कर, होय दयाल मिल गल लावे, संत अनंत ना भेद गणावे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं कि संतां विच उस अनंत परमात्मा विच कोई फर्क नहीं, पर यह भी याद रखना संत ओ जिन्हां दे जीवन भगत जयदेव वर्गे हैं।

जनक पूर्ण दीजा हम बन बन जाओ मैया कारण कारण कमन अबोल रहा बहुत जन्म बिछरे थे माधो जो जन्म तुम्हारे लेके सर्वदास आसन।

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नूं पकड़दा है। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई एक बारी

उस हरी ने बाकी इंसानों भी पैदा किया। तुहाडे विच भी हरी, उन्हां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करते? ये उपदेश सुनिया उन आदमखोरा ने नामदेव के चरणा

दसो तुहानू किन्ना सोना दिया दूसरिया नू ते थोड़ा सोना दिता है तुहानू मैं ज्यादा सोना देंगा क्योंकि सेठ दे मन विच अहंकार है इस गल का माण है कि मैं बड़ा वड्डा धनी हां कहन लगा नामदेव दसो तुहानू किन्ना सोना दें नामदेव जी मुस्कुरा पे ते समझ गए

उस वक्त इस शब्द का उपदेश नामदेव जी ने किया। उन्होंने लोगों को उपदेश जेड़े कर्मकांड करते हैं पर मन विच

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर